फोटोग्राफी इज अ हॉबी दर्शन, नॉट अ करियर. पहले तुम अपना फ्यूचर संभालो, फिर हमारे फ्यूचर के बारे में सोचना.

0: क्या हुआ?
1: वो तो
0: क्यूट है ना?
1: अरे पहलवान है,
0: पर तुमसे प्यार करती है।
1: हो नहीं सकता।
0: और तुम्हें भी उससे प्यार करना चाहिए।
1: हो नहीं सकता।
0: वो तुम्हें पकड़ने यही आ रही है।
1: ये हो नहीं सकता।
2: होनी को तो कुछ भी हो सकता है मेरे श्याम।

कुछ मैं बदल गया हूँ, कुछ दिल बदल गया है। कुछ मैं बदल गया हूँ, कुछ दिल बदल गया है। मेरा वजूद

आखिर मेरा जुनून मेरे काम आ गया, आखिर मेरा जुनून मेरे काम आ गया, उनके लबों पे आज मेरा नाम आ गया।

इंसाफ का मंदिर है ये, इंसाफ का मंदिर है ये, भगवान का घर है। हमारी सभी सुनने वालों की सेवा में मेरे तरफ से हर एक को सादर नमस्कार और आदाब बरसों। ये है ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन रेडियो SBS का प्रोग्राम जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। जो बीमार या लाचार है भगवान से तंदुरुस्त के लिए प्रार्थना या तो अल्लाह से दुआ किया जा रहा है उन सभी की दुख और हमें हमेशा के लिए दूर करने के लिए। जिन लोगों के घर पर खुशियां ही खुशियां है, सारी सालगिरह विवाह संस्कार जन्मदिन या तो प्यारा प्यारा बच्चा पैदा हुआ है, तहे दिल से बधाई और मुबारकबाद पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम की तरफ से। सुनने वालों आज रविवार का दिन है, आप सभी सुनने वालों को शुभ सुबह शुभ दिन पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम के तरफ से। हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए इन्फो के लिए रेडियो SBS का टेलीफोन नंबर है 0325656560 और स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 0302266611। मैं हूं आपका खिदमत गुजार अबीन। रेडियो SBS का वेबसाइट radio.sbs.nl, उसी वेबसाइट के जरिए अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड कंप्यूटर के जरिए आप हमारा प्रोग्राम को सुन सकते हैं और सभी इंटरनेट रेडियो के जरिए भी प्रोग्राम सुनाई देता है। तो चलिए यहाँ से प्रोग्राम भजन यात्रा की ओर हम आपको ले चलते हैं। आज रविवार की सुबह के प्रोग्राम में जो पेश किया जा रहा है भजन यात्रा प्रोग्राम का पहला भजन हमेशा होता है हरिहरन की आवाज में, सुबह सुबह लो शिव का नाम पेश किया जा रहा है हमारी सभी सुनने वालों और सभी भक्त।

सुबह सुबह लो शिव का नाम हरिहरन की आवाज में सुंदर सा भजन बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में रविवार के सुबह की प्रोग्राम पेश किया जा रहा है प्रोग्राम भजन यात्रा आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। अगला भजन अनूप जलोथा जी की आवाज

0: अनूप जलोत्रा जी की आवाज में ये सुंदर और सुंदर भजन बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। अनूप जलोत्रा के बाद पंडित गैनेन्द्र शर्मा जी की आवाज में चले मिलकर ये सुंदर भजन को सुनते हैं आज रविवार की भजन यात्रा प्रोग्राम में।
1: भगवत प्रेमी सज्जनों, प्रस्तुत भजन में भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी मधुबन में झूला झूल रहे हैं और राधा की सखियां व कन्हैया के सखा ग्वाल बाल सभी मिलकर झोटा दे रहे हैं। इस मनोहर दृश्य को देखकर भक्त अपने हृदय के भावों को किस तरह से व्यक्त कर रहा है, सुनिए।

आवास में आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई है। प्रोग्राम भजन यात्रा पेश किया जा रहा है। चले प्रोग्राम में अब की बार मिलकर ये सुंदर और सुंदर सा भजन को सुनते हैं। आज के प्रोग्राम में जो पेश किया जा रहा है सोनू निगम की आवाज में, सोनू

दिन यात्रा आप सभी सुन वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 0322 66 66 11। हरिओम शरण जी प्रोग्राम में।

शरण जी की आवाज में ये सुंदर और सुंदर भजन आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई। प्रोग्राम भजन यात्रा पेश किया जा रहा है। अब की बार सुंदर भजन जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है रेडियो SBS के जरिए आप जरूर और जरूर सुनते ही रहना। चले मिलकर ये सुंदर भजन को सुनते हैं। एक सुंदर सा श्री कृष्ण भजन पेश किया जा रहा है।

पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में प्रोग्राम भजन यात्रा पेश किया जा रहा है। चले प्रोग्राम में अब की बार ये सुंदर भजन की ओर जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है रेडियो SBS के जरिए जरूर और जरूर सुनते ही रहना। हम आपको ले चलते हैं गुरमीत और मीना की ओर।

यात्रा प्रोग्राम में और आरती भजन पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम के तरफ से, हमारे तरफ से, हमारा पूरा परिवार के तरफ से, आप सभी सुनने वालों के लिए, सभी भक्त प्राणियों के लिए, उन सभी के लिए जो बीमार या लाचार है, सभी दुखित प्राणियों के लिए, सभी बच्चों के लिए और खास तौर पर सभी सुनने वालों जो दुनिया के कोने कोने में रेडियो SBS का प्रोग्राम को सुनते हैं, उनके लिए और उनके पूरा परिवार के लिए, हर एक के लिए शुभ सुबह शुभ दिन के साथ।

9 बजकर प्रोग्राम में 5 मिनट व्यतीत हो चुका है। सुनने वालों रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। आज एतवार का दिन, रविवार का दिन है, 6 तारीख सितंबर का प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। और आज का प्रोग्राम जरूर और जरूर सुनते ही रहना। मौसम भी खूबसूरत सुहाना मौसम होने वाले है, धूप ही धूप का मौसम, तो रेडियो SBS का ये प्रोग्राम जरूर और जरूर फॉलो करते ही रहना। यहाँ से पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जाएगी। पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम आप जरूर सुनते ही रहना। ये प्रोग्राम गर्मा गर्म कॉफी चाय के साथ हमेशा आपकी सेवा में बस पेश किया जा रहा है।

सुनने वालों को स्वागत किया जा रहा है गर्मा गर्म कॉफी चाय के साथ। उसके बाद पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम पेश किया जाएगी। तो चले यहां से प्रोग्राम में पहला गाना की ओर हम आपको ले चलते हैं, जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है।

और आशा जी की आवाज में ये गाना पेश की गई, जॉनी मेरा नाम फिल्म का गीत बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। रविवार एतवार का दिन 6 सितंबर का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। 9:00 प्रोग्राम में 11 मिनट व्यतीत हो चुका है। 11 न्यूटन ओवर देख धूप ही धूप निकला हुआ है। जबकि हम स्टूडियो के बाहर देखते हैं आज का मौसम भी खूबसूरत सुहाना मौसम होने वाले हैं। और आज हजारों हजारों लोग जाकर आफास लाइफ आमस्टरडाम शहर के अंदर में कुमार सानू और अनुराधा पोटवल का कॉन्सर्ट देखने वाले हैं। जरूर मुलाकात होगा। आमस्टरडाम शहर के अंदर में आफास लाइफ अरेना बुलेवार वहां पर कुमार सानू और अनुराधा पोटवल का कॉन्सर्ट पेश होने वाले हैं। चलिए प्रोग्राम में मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है। स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 03-22-66-66-11। इसी तार की नंबर पर ऐप भी आप कर सकते हैं रेडियो SBS का ऐप पर, और ऐप द्वारा भी आप तार कर सकते हैं। मौसम खूबसूरत सुहाना मौसम है, कोई भी गीत सुनना है तो जरूर हमें तार कीजिए, ऐप कीजिए और जरूर खबर कीजिए ऐप में कि कहां से आप, कौन सा शहर में आप हमारा प्रोग्राम को फॉलो कर रहे हैं। मोहम्मद रफी

है तो फिल्म तुम हंसी मैं जवान, मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है हर सुबह की तरह, आज सुबह भी ये प्रोग्राम आपकी सेवा में। बहुत सी सुनने वालों होते हैं जो प्रोविंसी साइड होलांद में हमारा प्रोग्राम डे आ बे प्लस रेडियो के जरिए बस सुनते हैं। सभी को वेलकम और प्रोग्राम जरूर सुनते ही रहना। खासतौर पर रशीद पीरू रोटरडम शहर के अंदर में भी हमारा प्रोग्राम सुनते हैं। रशीद आपको भी अनहेल खुद मोर्ख, मौसम आज का खूबसूरत सुहाना मौसम है। हम आशा उम्मीद रखते हैं कि रोटरडम शहर के अंदर में धूप भी निकला हुआ है। और रशीद पीरू आज की प्रोग्राम में एक गाना मांग किया है और गाना मांग किया है सभी सुनने वालों के लिए आया सावन झूम के फिल्म का नाम मोहम्मद रफी एंड लता, उसी फिल्म का टाइटल सॉन्ग। रोटरडम शहर का रहने वाला रशीद पीरू ये गाना सभी और सभी सुनने वालों के लिए मांग किया है।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना पेश की गए आया सावन झूम के। और खास तौर पर रोटरडम शहर का रहने वाला रशीद पीरू का मांगी हुई गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी सुनने वालों के लिए। रशीद आपको शुभ दिन पेश किया जा रहा है प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए लाख लाख शुक्रिया। और रेडियो SBS का प्रोग्राम सुनते ही रहना। स्टूडियो के अंदर तार जोड़ तोड़ से अंदर आते हैं, हाँ जोड़ तोड़ से तार अंदर आते हैं और सुनने वालों जोड़ तोड़ से भी ऐप कर रहे हैं। तो तुरंत सुनने वालों की मांगी हुई गाना की ओर हम आपको ले चलते हैं। लता मंगेशकर की आवाज में गाना पेश होगा और रोटरडम शहर की रहने वाली रिया भी हमारा प्रोग्राम सुनते हैं और ये गाना को मांग किया है।

0: अभिनीत रही फिल्म का गीत पेश की गई लता जी की आवाज में। ये गाना भी आपने सुना। रोटरडम शहर की रहने वाली रिया, रिया की मांगे हुए गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई। आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में शुभ दिन पेश किया जा रहा है और रेडियो SBS का प्रोग्राम जो है जरूर सुनते ही रहना। गाना मांग करने के लिए टेलीफोन नंबर है स्टूडियो का 0322 66 66 11, या तो इसी तार की नंबर पर ऐप भी आप कर सकते हैं रेडियो SBS का ऐप पर, और ऐप द्वारा भी आप तार कर सकते हैं। चले प्रोग्राम में हम आपको ले चलते हैं खबरें की ओर, और खबरें के बाद और भी सुनने वालों की मांगी हुई गाना बस प्रोग्राम में पेश किया जाएगी।
1: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op Radio SBS. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn de stemlokalen geopend. De verkiezingen staan onder grote belangstelling omdat hier voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog een extreemrechtse partij de meerderheid zou kunnen krijgen. Het Amerikaanse vliegdekschip Abraham Lincoln heeft na een korte rust- en bijtankpauze voor de bemanning het Thaise Pattaya weer verlaten. De vrees voor ongeregeldheden en seksuele uitspattingen in de Thaise badplaats is ongegrond gebleken. De mannen die in de Amsterdamse PC Hoofdstraat vanaf een fatbike toeristen beroofden, hebben 18 maanden gevangenisstraf gekregen. In het zuidwesten van Frankrijk woedt al 4 dagen een natuurbrand. Die heeft inmiddels 105 hectare natuur verwoest. Het weer. Het wordt vandaag zonnig en droog bij een middagtemperatuur van 21 tot 24 graden. De wind draait naar het zuiden en is zwak tot matig. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Radio SBS.
2: Nu de verkeersinformatie op Radio SBS.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg.
2: Tot zover de verkeersinformatie op Radio SBS.
0: Radio SBS का प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। चलिए यहाँ से सुनने वालों की मांगी हुई गाना की ओर हम आपको ले चलते हैं। Utrecht, Leidse Rijn, Geerdhari Straat. हाँ, Geerdhari Straat से राजन गिरधारी भी हमारा प्रोग्राम इस वक्त सुनते हैं। सभी सुनने वालों को बस शुभ दिन पेश कर रहे हैं और मांग किया है ये गाना मुकेश जी की आवाज में। Utrecht Leidse Rijn गिरधारी स्ट्रैट का रहने वाला राजन गिरधारी का मांगे हुए गाना।

एडवांस में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई। उत्तरेख लाइट रेन गेड़धारी स्त्रात का रहने वाला राजन गेड़धारी ये खास गाना आज की प्रोग्राम में मांग किया आप सभी सुनने वालों के लिए। 8 मिनट बैठित हो चुका है सुबह 9:30।

प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। फरमाइश हुआ इश्तिहारे रिक्लाम मृत्यु समाचार या मौत की खबर के लिए हर एक इन्फॉर्मेशन से आप लीजिए तार का नंबर टेलीफोन नंबर 0325656560 24 uur per dag bereikbaar होता है और साथ ही साथ 24 uur per dag भी हमारा मेल और रेडियो SBS का ऐप भी बराबर होता है। मेल और ऐप करना है रेडियो SBS का वेबसाइट की जरिए radio.sbs.nl। देन हक शहर की रहने वाली कमला भी हमारा प्रोग्राम को सुनते हैं और कमला ये काफी पुरानी फिल्म का गीत आज की प्रोग्राम में मांग किया है।

रेडियो SBS के जरिए ये गाना बस पेश की गई आशा जी की आवाज में। सावन की घटा फिल्म का नाम डेनहाग शहर की रहने वाली, डेनहाग शहर की रहने वाली कमला ये गाना आज की प्रोग्राम में मांग किया, जो आप सब ही सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई है। बहुत सी सुनने वालों है जो पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम को सुनते हैं और स्टूडियो की ओर तार किया है, ऐप किया है और अपना अपना गाना को मांग किया है। एक गाना प्रोग्राम में पेश होगा आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में, और गाना अपना गाना को मांग किया है। एक गाना प्रोग्राम में पेश होगा आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में, और गाना रोथडम शहर

रोटरडम शहर का रहने वाला हारोल का मांगे हुए गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए। काफी खूबसूरत प्यार भरे गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए। शुभ दिन पेश किया जा रहा है और रेडियो SBS का प्रोग्राम रोटरडम शहर के अंदर में जरूर सुनते ही रहना। रोटरडम शहर के अंदर में इन दिनों बहुत से सुनने वालों होते हैं जो हमारा प्रोग्राम को सुनते हैं रोटरडम और देन हाग शहर के आसपास में, इसलिए कि हमारा प्रोग्राम वहां पर प्रोविंसी साउथ हॉलैंड में डीएबे प्लस रेडियो के जरिए आप सुन सकते हैं अपना मोटर कार में, अपना घरों में। स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है, गाना जब भी आप मांग करना चाहेंगे, ऐप द्वारा भी आप मांग कर सकते हैं, ऐप द्वारा भी आप तार कर सकते हैं और ऐप का नंबर होता है वही स्टूडियो का टेलीफोन नंबर 0322 66 66 11, या तो रेडियो SBS का वेबसाइट पर आप जाइए अपना मोबाइल टेलीफोन पर और उसी वेबसाइट की जरिए भी आप ऐप कर सकते हैं। हमारा प्रोग्राम भी सालों से सुनते हैं उत्तराखंड शहर के अंदर में, उत्तराखंड लाइटसराइन का रहने वाला राजेश उदित, और राजेश उदित भी इस वक्त हमारा प्रोग्राम को सुनते हैं और एक खूबसूरत गाना मोहम्मद रफी की आवाज में बस मांग किया है।

ओटवल का कॉन्सर्ट पेश होने वाले हैं, हजारों लोग जाकर कॉन्सर्ट को देखने वाले हैं, इसलिए कि हजारों हजारों टिकट बिक चुका है और वो भी iStripTickets.com वेबसाइट के जरिए। बस मुलाकात होगा आज शाम के वक्त में आवाज लाइव थिएटर में, मिलकर देखेंगे एक बड़ी ही खूबसूरत कॉन्सर्ट कुमार सानू और अनुराधा पोटवल का। चलिए यहां से प्रोग्राम में तुरंत गाना की ओर हम आपको ले चलते हैं, जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। उत्तराखंड शहर की रहने वाली श्रीमती माखदा नुंदा, भी प्रोग्राम को सुनते हैं और लता जी की आवाज में एक गाना सुनना चाहते हैं, तो पेश किया जा रहा है फिल्म मॉडर्न इंडिया का ये गीत।

द्वारे द्वारे लता जी की आवाज में फिल्म मॉडर्न इंडिया का गीत अभी आपने सुना। उत्तराखंड शहर की रहने वाली श्रीमती माखदा नुंदा ये खास गाना लता जी की आवाज में बस मांग किया, इसी तरह से बस पेश की गई रेडियो SBS की जरिए। शुभ दिन पेश किया जा रहा है और रेडियो SBS का प्रोग्राम जरूर और जरूर सुनते ही रहना। गाना जो अब की बार पेश होगा किशोर कुमार की आवाज में राजा जानी फिल्म का गीत आप सुनेंगे और स्टाफोर्ड शहर का रहने वाला प्रेम मटाओ ये गाना आज की प्रोग्राम में मांग किया आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में।

किशोर कुमार की आवाज में ये गाना प्रोग्राम में पेश की गई और मांग करने वाला था स्थापोर शहर का रहने वाला प्रेम मटाओ, प्रेम मटाओ का मांगी हुई गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई। किशोर कुमार का काफी बड़ा फैन है तो किशोर कुमार की आवाज में ये गाना आज की ये प्रोग्राम में मांग किया आप सब।

और रेडियो SBS का प्रोग्राम जरूर और जरूर सुनते ही रहना। 10:12 व्यतीत हो चुका है। मौसम भी आज का खूबसूरत सुहाना मौसम है और इसी मौसम में आज शाम के वक्त में बहुत सी लोग है जो जाकर कुमार सानू और अनुराधा पोटवाल का कॉन्सर्ट देखेंगे। आफास लाइफ

द मैडविड गोल्डन वॉइस तलत महमूद जी की आवाज में पेश होगा। उत्तराखंड शहर का रहने वाला श्रीमान किशोर है। श्रीमान किशोर भी हमारा प्रोग्राम गर्मा गर्म कॉफी के साथ बस सुनते हैं और एक गाना मांग किया है तलत जी की आवाज में, जिंदगी देने वाली सुन। उत्तराखंड शहर का रहने वाला श्रीमान किशोर का मांगे हुए गाना तलत जी की आवाज में, दिले नादान फिल्म का नाम।

फिल्म का गीत पेश की गई द मैन विद द गोल्डन वॉइस, तलत महमूद जी की आवाज में ये गाना भी आपने सुना। और खास तौर पर उत्तराखंड शहर का रहने वाला श्रीमान किशोर का खास मांगे हुए गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई है। आपको भी शुभ दिन पेश किया जा रहा है। मौसम आज का खूबसूरत सुहाना मौसम है, तो इस मौसम में रेडियो SBS का प्रोग्राम जो है जरूर और जरूर सुनते ही रहना। अब की बार हम आपको ले चलेंगे सुतमेर शहर की ओर, और सुतमेर शहर के अंदर नेहा भी हमारा प्रोग्राम इस वक्त सुनते हैं, और नेहा लता जी की आवाज में एक गाना मांग किया है फिल्म मुकद्दर का सिकंदर, उसी फिल्म का ये गाना दिल तो है दिल। सुतमेर शहर की रहने वाली नेहा की मांगी हुई गाना फ्रॉम द मूवी मुकद्दर का सिकंदर।

है दिल, फिल्म का नाम मुकद्दर का सिकंदर, सुतबेर शहर की रहने वाली नेहा नेहा की खास मांगी हुई गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई, काफी प्यार भरी गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई है। शुभ दिन पेश किया जा रहा है और रेडियो वेस्ट में इसका प्रोग्राम जो है जरूर और जरूर सुनते ही रहना। पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है और हमारा प्रोग्राम सुतमीर शहर के अंदर में भी डीएबी प्लस रेडियो के जरिए भी सुनाई देता है, आपकी मोटर कार में, आपके घरों में। रोटरडम शहर की ओर हम आपको ले चलते हैं और रोटरडम शहर के अंदर में रामोन और अंजलि हमारा प्रोग्राम को सुनते हैं। और एक खास गाना मांग किया है मुकेश जी की आवाज में, फिल्म का नाम हम हिंदुस्तानी, 1960 का फिल्म, 1966 का फिल्म है फिल्म हम हिंदुस्तानी, और उसी फिल्म का एक गाना मांग करने वाले हैं रोटरडम शहर के रहने वाले रामोन और अंजलि, ये गाना।

0: 90 रुपीज की आवाज में फिल्म हम हिंदुस्तानी, उसी फिल्म का गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई और गाना को मांग करने वाले थे रोटरडम शहर के रहने वाले रामोन और अंजलि की मांगी हुई गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों के लिए शुभ दिन पेश किया जा रहा है और रेडियो SBS का प्रोग्राम जो है जरूर और जरूर सुनते ही रहना। सुनने वालों इस वक्त घड़ी की ओर देखा जाए साढ़े 10 का वक्त हलफ स्टूडियो तय हो चुका है। प्रोग्राम में हम आपको ले चलेंगे हेडलाइन न्यूज की ओर और खासतौर पर फकीर्स इंफॉर्मेशन की ओर, तो जरूर आप सुनते ही रहना। उसके बाद और भी सुनने वालों की मांगी हुई गाना बस प्रोग्राम में पेश किया जाएगी।
1: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op Radio SBS. Het Israëlische leger heeft vanochtend doelen in Zuid-Libanon gebombardeerd als vergelding voor een aanval van Hezbollah met 2 drones op Israëlische militairen. Een van de oprichters van Spotify, Martin Lorentzon, heeft gedreigd om uit Zweden te emigreren als dat land een speciaal belastingtarief voor miljonairs invoert. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn de stemlokalen geopend. De verkiezingen staan onder grote belangstelling omdat hier voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog een extreemrechtse partij de meerderheid zou kunnen krijgen. Het Amerikaanse vliegdekschip Abraham Lincoln heeft na een korte rust- en bijtankpauze voor de bemanning het Thaise Pattaya weer verlaten. Het weer. Het wordt vandaag zonnig en droog bij een middagtemperatuur van 21 tot 24 graden. De wind draait naar het zuiden en is zwak tot matig. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Radio SBS.
2: Nu de verkeersinformatie op Radio SBS.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. 1 file deze zondagochtend en die staat op de A1 van Hengelo naar Apeldoorn. Tussen afrit Rijssen en Badmen rijdt het langzaam en staat er stil over 10 kilometer. 2 rijstroken zijn daar dicht en dat kost je een kwartier.
2: Tot zover de verkeersinformatie op Radio SBS.
0: पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है और आज के प्रोग्राम में सुनने वालों की मांगे हुए गाना पेश किया जा रहा है। तुरंत हम आपको ले चलते हैं इसलिए कि और भी सुनने वालों की मांगी हुई गाना बस प्रोग्राम में पेश होना चाहिए और ये प्रोग्राम पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम तकरीबन 11 बजे तक आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जाएगी। दीमन शहर की ओर हम आपको ले चलते हैं। दीमन शहर में मनोज हमारा प्रोग्राम को सुनते हैं और मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना को मांग किया है। शमी कपूर का फिल्म है ब्रह्मचारी, फिल्म का नाम 1968 का फिल्म, 1968 का फिल्म।

पद्मश्री मोहम्मद रफी, पद्मश्री मोहम्मद रफी की आवाज में यह गाना पेश की गई ब्रह्मचारी फिल्म का नाम, और खास तौर पर दीवन शहर का रहने वाला मनोज का मांगे हुए गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई। काफी प्यार भरी गाना आपने मांग किया, आज के प्रोग्राम में पेश की गई अयोध फिल्म ब्रह्मचारी। शुभ दिन पेश किया जा रहा है और रेडियो एसबीएस का प्रोग्राम जो है जरूर और जरूर सुनते ही रहना। शेरुत्र लाइव वनआउट द मोस्ट स्टार्ट फॉर नीदरलैंड, वनआउट द हार्ट फॉर नीदरलैंड, रेडियो एसबीएस का ये प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। इस वक्त हजारों हजारों सुनने वालों बस प्रोग्राम को फॉलो कर रहे हैं, सुनते हैं, सभी को वेलकम। डेन हाग शहर के अंदर निर्मला हमारा प्रोग्राम भी सुनते हैं और निर्मला पुरानी फिल्मी संगीतों का प्रोग्राम काफी पसंद करते हैं और डेन हाग शहर के अंदर भी हर सुबह ये प्रोग्राम को सुनते हैं। और आज के प्रोग्राम में लता जी की आवाज में एक गाना सुनना चाहते हैं, फिल्म का नाम एक महल हो सपनों का।

दत्ता जी की आवाज में ये गाना बस पेश की गई और डेन हाग शहर की रहने वाली निर्मला ये गाना आज की प्रोग्राम में सुनना चाहती थी और इसी तरह से प्रोग्राम में पेश की गई। शुभ दिन पेश किया जा रहा है और रेडियो SBS का प्रोग्राम जो है जरूर सुनते ही रहना और खासतौर पर पुरानी फिल्मी संगीतों का प्रोग्राम जो हमारी बहुत सी सुनने वालों हॉलैंड देश के अंदर हॉलैंड देश के बाहर देश विदेश में भी सुनते हैं। एक गाना है बस उत्तराखंड शहर का रहने वाला विजय सुनना चाहते हैं और वो भी मुकेश और लता जी की आवाज में। एक बड़ी ही खूबसूरत फिल्म है, फिल्म का नाम मिलन, उसी फिल्म का ये गाना उत्तराखंड शहर का रहने वाला विजय ये गाना को मांग किया है, गाना को सुनना चाहते हैं। खासतौर पर सुनील दत्त और नूतन का फिल्म, फिल्म का नाम मिलन।

उत्तराखंड शहर का रहने वाला विजय का मांगी हुई गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। मुखी सौलता जी की आवाज में फिल्म मिलन का गीत अभी आपने सुना। विजय आपको भी शुभ दिन पेश किया जा रहा है और रेडियो SBS का प्रोग्राम जरूर सुनते ही रहना। मॉरिशस में हमारा प्रोग्राम इस वक्त दूषण जिंगरी बस सुनते हैं और आज की खास पुरानी फिल्मी संगीतों का प्रोग्राम में एक गाना मांग किया है लता जी की आवाज में फिल्म मेरा साया। उसी फिल्म का गाना बस मांग किया है मॉरिशस का रहने वाला दूषण जिंगरी। तो चले मिलकर सुनते हैं ये खास गाना जो आप सभी सुनने वालों के लिए पेश किया जा रहा है।

तेरा साया उसी फिल्म का गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई। मॉरिशस का रहने वाला दुष्यंत जिगरी का खास मांगी हुई गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई। दुष्यंत भी हमेशा मॉरिशस में हमारा प्रोग्राम सुनते हैं और जब जब आप सभी को

और खूबसूरत सुहाना दिन पेश किया जा रहा है और रेडियो SBS का प्रोग्राम जरूर सुनते ही रहना। एक आखिरी सुन वालों की मांगी हुई गाना बस प्रोग्राम में पेश होगा।

और खासतौर पर अलीगढ़ इंडिया भारत देश में धर्मेंद्र चौहान भी हमारा प्रोग्राम फॉलो कर रहे हैं अलीगढ़ इंडिया भारत देश में। तो आज के प्रोग्राम में एक गाना मांग किया है मोहम्मद रफी और लता जी की आवाज में, तो चले मिलकर गाना को सुनते हैं जो धर्मेंद्र चौहान ने मांग किया है इंडिया भारत देश अलीगढ़ से। और ये आखिरी पुरानी फिल्म का गीत है और आखिरी सुनने वालों की मांगी हुई गाना भी।

0: मोहम्मद रफी और लता जी की आवाज में ये गाना बस पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। खासतौर पर इंडिया भारत देश अलीगढ़ से गाना मांग किया आज की प्रोग्राम में धर्मेंद्र चौहान और इसी तरह से ये गाना पेश की गई है। शुभ दिन पेश किया जा रहा है और रेडियो SBS का प्रोग्राम सुनते ही रहना। यहाँ तक पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश की गई। कल सोमवार है, कल सुबह 9 बजे से फिर पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम जरूर और जरूर सुनते ही रहना, जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जाएगी। सुनने वालों, आपको खबर किया जा रहा है कि आज शाम में कुमार सानू और अनुराधा पोटवल का लाइव कॉन्सर्ट पेश किया जाएगी आवास लाइव आमस्टरडाम शहर के अंदर में, अरेना बुलफार आवास लाइव थिएटर में। एक बड़ी ही खूबसूरत थिएटर जहां पर काफी बड़े बड़े कॉन्सर्ट होते हैं। दूसरी थिएटर में कुमार सानू और अनुराधा पोटवल का कॉन्सर्ट पेश होगा। टिकट के लिए आपको जाकर देखना होगा iStripTicketsPoint.com वेबसाइट पर। वहां पर आप जाकर, उसी वेबसाइट पर आप जाकर देखिए कि ये टिकट है या नहीं। हजारों हजारों लोग जाकर कुमार सानू और अनुराधा पोटवल का कॉन्सर्ट देखने वाले हैं। रेडियो SBS का ऐप पर भी काफी लोग यही सवाल किया है कि हम जाएंगे कॉन्सर्ट देखने के लिए। हाँ, हम भी जाएंगे, आप भी जाएंगे, तो मिलकर एक खूबसूरत कॉन्सर्ट को देखेंगे आफास लाइव आमस्टरडाम में। तो चलिए यहां से प्रोग्राम में खबरें की ओर हम आपको ले चलते हैं और खबरें के बाद तुरंत हम आपसे फिर मिलते हैं आगामी प्रोग्राम लेकर के।
1: En nu reclame, nieuws en het weerbericht op Radio SBS.
2: इस तरह आशिकी का असर छोड़ जाऊंगा।
3: मैं कुमार सानू और मैं आ रहा हूँ आपके शहर एम्स्टरडाम में।
4: मैं अनुराधा पोरवाल आ रही हूँ एम्स्टरडाम में।
2: राह में उनसे मुलाकात हो गई।
3: 6th of September, unforgettable 90s.
4: के लिए ला रहे हैं रागा
3: इवेंट्स फ्रॉम हॉलैंड। क्या आप अपना टिकट जल्दी से बुक कर
0: लीजिए। रागा इवेंट्स प्राउडली प्रेजेंट्स अनफॉरगेटेबल 90s लाइव इन कॉन्सर्ट द टाइगर ऑफ

चुका है 11 बजकर। रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। आज रविवार का दिन है, 6 तारीख सितंबर का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। आज सुतमेर शहर की रहने वाली शांता की जन्मदिन है। रेडियो SBS का पूरा टीम के तरफ से बधाइयां ही बधाइयां पेश किया जा रहा है। और शांता एक गाना बहुत पसंद करते हैं कुमार सानू जी की आवाज में, तो लीजिए शांता की जन्मदिन के मौके पर ये गाना पेश किया जा रहा है, जाने मन तुम हो कहां, कुमार सानू जी की आवाज में।

गाना स्पेशल पेशवा है शांता के लिए, सुतमेर शहर के रहने वाली जिनकी आज जन्मदिन है। रेडियो SBS का फुल टीम के तरफ से जन्मदिन लाख लाख बधाई हो। सुनने वालों आपको मालूम होना चाहिए 6 तारीख सितंबर है और कुमार सानू जी का और अनुराधा पोटवल का लाइव कॉन्सर्ट भी होने वाले हैं। आफास लाइव आमस्टरडम शहर के अंदर में काफी लोग अपना टिकट को खरीद चुके हैं, हजारों हजारों लोग अपना टिकट को खरीद चुके हैं और आज शाम में जाकर कुमार सानू और अनुराधा पोटवाल का कॉन्सर्ट देखने वाले हैं। हम भी जाएंगे, आप भी जाएंगे। और मिलकर कॉन्सर्ट को देखेंगे। टिकट के लिए आप जाइए istripticketspoon.com। मालूम नहीं है कि कुछ टिकट बाकी है, मेरा ख्याल से outverkocht सबके सब टिकट, लेकिन आप जाकर जरूर देखिए istripticketspoon.com। वहां पर आप देखेंगे टिकट है या नहीं। चलिए प्रोग्राम में एक गाना आपकी ये सेवा में पेश किया जा रहा है, अनुराधा पोटवाल एंड कुमार सानू जी की आवाज में। कहते हैं धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, आशिकी फिल्म का नाम, उसी फिल्म का ये गाना। उन दिनों का एक काफी हिट सॉन्ग सानू एंड अनुराधा, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना। लाइफ अनहेलमोइन बार आशिकी मूवी का नाम।

धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना। अनुराधा पोडवाल और कुमार सानू जी की आवाज में आई द फिल्म आशिकी 1989 का फिल्म, 1990 का फिल्म आशिकी, उसी फिल्म का ये काफी प्यार भरी गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई है। चले अनुराधा पोडवाल जी की आवाज में गाना पेश किया जा रहा है और ये गाना भी काफी खूबसूरत है, अनुराधा पोडवाल की आवाज में जो पेश किया जा रहा है आज शाम में। कुमार सानू और अनुराधा पोडवाल का कॉन्सर्ट होगा आफास लाइव इन आमस्टरडम।

Alu Jighia Basmin. Uit de film Jina Marna Tere Sang, उसी फिल्म से गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में 12 मिनटों ओवर हाफ 12 स्टूडियो टाइट हो चुका है। तकरीबन 12 बजे तक कुछ गाने नखमे पेश होगा अनुराधा पोटवाल और कुमार सानू जी का कॉन्सर्ट जो आज होने वाले हैं आवास लाइफ आम्स्टरडम शहर के अंदर में। शुक्रिया फिल्म का नाम

रेडियो SBS के जरिए ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी सुनने वालों की सेवा में एक गाना प्रोग्राम में होगा कुमार सानू और अनुराधा पोडवाल जी की आवाज में हम आपके दिल में रहते हैं उसी फिल्म का टाइटल सॉन्ग कुमार सानू।

अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू जिघे आवाज में ये गाना पेश की गए। चलिए एक और गीत पेश किया जा रहा है, उसके बाद खबरें पेश होगा। खबरें के बाद तुरंत हमारा आगामी प्रोग्राम जरूर आप सुनते ही रहना। कुमार सानू और अनुराधा पौडवाल के आवाज में ये गाना अब की बार पेश किया जा रहा है। मैंने

और अलका जी की आवाज में ये खूबसूरत गाना आज के प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसरो मीठे की गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। चले प्रोग्राम में अब की बार ये गाना की ओर हम आपको ले चलते हैं। गाना पेश होगा सोनू निगम और अलका जी की आवाज में, फिल्म का नाम हसीना मान जाएगी।

रेडियो SBS की जरिए फिल्म हसीना मान जाएगी, उसी फिल्म का ये गाना पेश की गई सोनू निगम एंड अलका जी की आवाज में। गाना भी आपने सुना आज के प्रोग्राम में जो पेश की गई। चलिए प्रोग्राम में आपकी बार कुमार सानू और खास तौर पर साधना सरगम की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

हेट स्टोरी नंबर दो, उसी फिल्म का ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए प्रोग्राम में आपकी बार एक गाना की ओर हम आपको ले चलते हैं जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है सुनिधि चौहान की आवाज में।

धन्यवाद सेवा में। चले प्रोग्राम में गाना जो अबकी बार प्रोग्राम में पेश होगा अलका याग्निक एंड बाबू सुब्रियो की आवाज में। अबकी बार ये गाना पेश किया जा रहा है

अलका याग्निक और बाबू सुप्रियो की आवाज में ये खूबसूरत सा गाना पेश की गई सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। कुमार सानू जी की आवाज में अब की बार ये गाना पेश किया जा रहा है, कुमार सानू और अलका जी की आवाज में, और फिल्म का नाम खुद

प्रोग्राम में एक मिनट वेटेड हो चुका है। रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। तकरीबन 2 बजे तक यहां से प्रोग्राम में कुछ लोकल गाने, लोकल नख्मे आप हर एक के लिए पेश किया जाएगी, तो प्रोग्राम को आप जरूर और जरूर सुनते ही रहना। पहला गाना जो पेश किया जा रहा है निजाम की आवाज में, आप जरूर सुनते ही रहना।

रविवार 6 तारीख सितंबर का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं और आज का मौसम भी खूबसूरत सुहाना मौसम है।

गाना जो पेश की गई मेरे जीवन साथी उमर की आवाज में, ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चले प्रोग्राम में आपके बार रंग जाए होगा, 10 मिनट व्यतीत हो चुका है 1:00। कुछ लोकल नगमे तकरीबन 2 बजे तक आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है।

प्रंजय की आवाज में ये गाना पेश की गए लग जा गले। सुनने वालों रेडियो SBS का वेबसाइट रेडियो SBS.NL उसी वेबसाइट के जरिए अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड कंप्यूटर के जरिए भी हमारा प्रोग्राम को आप सुन सकते हैं।

नाम गाना जो प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS के जरिए सुनने वालों 13 मिनटों ओवर हाफ टू स्टूडियो टाइम हो चुका है। मत भूलना 3 बजे से बैठक गाना हंगामा प्रोग्राम पेश किया जाएगी ग्लेन रामबाली के जरिए। रिखिलियो एंड

एक आखिरी लोकल गीत पेश किया जा रहा है और इस गाने के बाद रिक्लाम होगा न्यूज मौसमी समाचार और प्रकीर्स इन्फॉर्मेशन उमर प्रोग्राम में।

0: En nu reclame, nieuws en het weerbericht op Radio SBS.
1: इस तरह आशिकी का असर छोड़ जाऊंगा।
2: मैं कुमार सानू और मैं आ रहा हूँ आपके शहर एम्स्टरडाम में।
3: मैं अनुराधा कोरवाल आ रही हूँ एम्स्टरडाम में।
1: राह में उनसे मुलाकात हो गई।
2: 6th of September, unforgettable 90s.
3: आपके लिए ला रहे हैं रागा इवेंट्स फ्रॉम हॉलैंड।
2: आप अपना टिकट जल्दी से बुक कर लीजिए।
4: रागा इवेंट्स प्राउडली प्रेजेंट्स अनफॉरगेटेबल 90s लाइव इन कॉन्सर्ट द टाइगर।

की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए एक गाना और प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है और वो भी सानू जी की आवाज में, आप सुनते ही रहना। और आपको खबर किया जा रहा है कि ग्लेन स्टूडियो में आ गए हैं, उनके जरिए प्रोग्राम अभी जरूर सुनते ही रहना। और 3 बजे से बैठक गाना प्रोग्राम पेश किया जाएगी।

कुमार सानू जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई। सुनने वालों मैं आप सभी सुनने वालों से इजाजत और आज्ञा चाहूंगा, कल सोमवार है, कल सुबह 7 बजे मैं आप सभी सुनने वालों से बस फिर मिलूंगा। ग्लेन आ गए हैं स्टूडियो में, अपना तैयारियां कर चुके हैं प्रोग्राम ओवर लेने के लिए। मैं था आपका खिदमत गुजार रबीन, 3 बजे से बैठक गाना हंगामा प्रोग्राम सुनते ही रहना।

के रोते हुए आते हैं सब किशोर कुमार के आवाज में। ओपनिंग नंबर भी आप सुनते हैं हमारा हिस्सा की प्रोग्राम से। भाई हूँ आपका खिदमतगुजार ग्लेन, बस सुनते रहना हमारा प्रोग्राम यहाँ से ओवर योर फेवरेट बॉलीवुड रेडियो स्टेशन, द वन एंड ओनली ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन शरित्रा केंद्र से।

0: का।
1: बोल मेरे तकदीर में क्या है,
2: तकदीर में क्या है मेरे।
1: आई थिंक लता मंगेशकर साथ में द माइटी मुकेश के वास में अभी आप सुन रहे थे। भाऊजी पीसे मसाला स्पेशली फॉर द भाऊजी की तरफ से, अक्षय कुमार नंदा की तरफ से, सभी भाऊजी के लिए।

आज मदहोश हुआ जाए रे। लता मंगेशकर साथ में किशोर कुमार के आवाज में, अभी आप सुन रहे थे मुकेश साथ में लता मंगेशकर। और इसी नंबर के बाद सुनते रहे नवोग्राम से कमर्शियल्स न्यूज फरके से फमासी, और उसके बाद में बैठक गाना हंगामा प्रोग्राम ओवर रेडियो एसबीएस।

तीन बजकर इस वक्त 6 मिनट गुजर रहा है। बैठक गाना हंगामा प्रोग्राम सुनते रहना यहाँ से ओवर रेडियो SBS।

कर या बता दे। हनी फ्रोजन के वास में भी आप सुनते और अब की बार सुनते रहना सुनील राम सुंदर के वास में। बेस्ट लिस्निंग बॉलीवुड रेडियो स्टेशन शरीर ट्रैक के अंदर से वन एंड ओनली ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन रेडियो SBS।

032-62-66-11 स्टूडियो का तारक नंबर वैसे फरमाइश इश्तिहार या तो रुचि समाचार के लिए 24 घंटा लगातार आप तार कीजिए 032-65-66-66

0: सुनील रामसुंदर के पास में भी आप सुन रहे थे।
1: सारी शहर चल जाए मोहनिया
0: के मोहनिया मोहनिया सारी शहर चली जाए जयंत महावीर के।

अदित्य सुपर साथ के वास में भी आप सुने थे के मोर मन लागा तो से रे चंदेव रमेश सर के वास में

0: कि संयमों से पनिया भरा नहीं जाए। रामदेव चैतू के वास में भी आप सुन रहे थे। 4:00 इस वक्त 5 मिनट गुजर रहा है। 5 मिनट नौ फिर लाइव के जरिए बैठक गाना हंगामा प्रोग्राम ओवर रेडियो SBS।
1: आले दो पंछी बैठे आया शिकारी कहीं से, डर से पंछी उड़ना।
0: हरि प्रसाद शिव नंदन के वास में।

के बी फ्रोवा से दिल लगेली रविंदर रविंदर बोला सिंह के पास में Suriname, Suriname verlengde hoge straat ze. Ram Mahesh zat met Gisla, die persoon zonder een programma.

सनातन के वास में भी आप सुनते सुरीनाम फलेंगे होगुस्त्रात से राम महेश साथ में खिसला की पसंद

0: राजू सिंह गुलाम के वास में के मोर चिरैया तोर चिरैया
1: अचानक कोई वीर
0: एक के संगे सूते और एक के संगे जागे
1: लागत जब नारी के तीरे
0: दनाक से हिसला यांकी की पसंद सुन रहे ना।

देनार से इसला यांकी की पसंद भी आप सुनते हैं और अब की बार सुनते रहना रेमन राम नारायण साथ में शिवम राजाराम रोटोडाम से शांता शांता रघु की पसंद

रोटरडम, रोटरडम से शांता रघु की पसंद भी आप सुन रहे थे। विशाल हीरा के वास में।

के सजनी हो सजनी, हफीज खान और साथियों के पास में अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम से शिवम, शिवम राजाराम के पास में।

0: छपर पुरानी हो गई कि तरकन लागे बास। अरे कब यही हो यार साजन मेरा खटोला।
1: सज्जनंद रेखा के पास।

0: सत्यनंत रेखा के वास में अभी आप सुनते प्रोग्राम से
1: मदीना का ऐसी बस्ती है आज के जिस पर

रामदेव चैतू के पास में भी आप सुनते सुजल सुजल उमराव के पास में सुनते रहना।

सुजल उमराव के पास में अभी आप सुनते प्रोग्राम से सुनते रहना प्रोग्राम से कमर्शियल न्यूज फरके से फमासी और उसके बाद में बैठक गाना हंगामा प्रोग्राम का तीसरा हिस्सा।

0: reclame, nieuws en het weerbericht op Radio SBS.
1: इस तरह आशिकी का असर छोड़ जाऊंगा।
2: मैं कुमार सानू और मैं आ रहा हूँ आपके शहर एम्स्टर्डम में।
3: मैं अनुराधा पौडवाल आ रही हूँ एम्स्टर्डम में।
1: राह में उनसे मुलाकात हो गई।
2: 6th of September, unforgettable 90s.
3: के लिए ला रहे हैं रागा इवेंट्स फ्रॉम हॉलैंड।
2: क्या आप अपना टिकट जल्दी से बुक कर लीजिए।
4: रागा इवेंट्स प्राउडली प्रेजेंट्स अनफॉरगेटेबल 90s लाइव इन कॉन्सर्ट द टाइगर

Inmiddels 5 minuten over 5. 5 बजकर इस वक्त 5 मिनट गुजर रहा है। लाइव के जरिए बैठक गाना हंगामा प्रोग्राम ओवर ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन रेडियो एस।

0: मोतीमाला बोला सिंह के वास में भी आप सुनते प्रोग्राम से, तवेंद्र सिंह शिवनाथ के वास में सुनते रहना।
1: ना मरली भेल भेल अनकी ना
0: अलमेरा, अलमेरा से आकाश गंगा दिन का पसंद सुनते रहना।

रविंद्र सिंह शिवनाथ के वास में अभी आप सुने थे हमार मशीनिया अलमेरा, अलमेरा से आकाश गंगा दिन का पसंद अभी आप सुने थे

In India, Ani Frozen ke baad isme abhi aap sun rahe hain. शिवम राजा राम साथ में रेमोन राम नारायण के वास में माइकल माइकल सुखू का पसंद सुन रहे ना.

0: के तप तप चूले चुवेला पसीना वो भी सजन बिना संदीप बदलू के वास में अभी आप सुन रहे थे सूते न देवे रात भर सूते न देवे
1: ना देवे
0: दविंद्र सिंह शिवनाथ के वास में
1: सूते ना देवे हमें सूते ना देवे
0: शैलेश रामदीन
1: रात भर हमें रात भर सूते ना
0: का पसंद सुनते रहना प्रोग्राम से

0: काहे रतिया तुम आइले रे राकेश यंकरन के वाज में
1: रामवारे
0: की बलमवारे ओ बलमवारे काहे रतिया तुम आइले रे राकेश यंकरन के वाज में काहे

बस समाप्त होने पर आया आज की बैठक गाना प्रोग्राम। यहाँ से आने वाले रविवार को शाम में सुनते रहना फिर से एक बार बैठक गाना हंगामा प्रोग्राम ओवर द कमर्शियल रेडियो SBS। अभी सुनते रहना प्रोग्राम से कमर्शियल न्यूज फरके से फमासी और उसके बाद में आज आंशलिक के जरिए प्रोग्राम सुनते रहना। मैं था आप ही का खिदमत सर ग्लेन। हमारे तरफ से आप सब सभी को एक शुभ शाम कहा जा रहा है। मिलेंगे फिर आने वाले रविवार को शाम में।

फिल्म अभिलाषा से आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में वादियां मेरा दामन, और अब आप सुनिए लता मंगेशकर और कुमार सानू की आवाज में फिल्म हम तुम पे मरते हैं से। ये एक फिल्म है उर्मिला मातोंडकर और गोविंदा का, और वो भी टाइटल सॉन्ग गाना है हम आप में कुछ हो गया, हम तुम पे मरते हैं।

इंदु की जवानी है फिल्म का नाम और अभिनेत्री है कियारा अडवाणी। गाने के बोल हैं हीले टूट गए और गाने वाले हैं बादशाह और आस्था गिल। अगला गाना प्रोग्राम गीतों के लहर में है मुकेश दा की आवाज में। फिल्म छोटी बहन से आप सुनिए जाऊं कहां बताए दिल, दुनिया बड़ी है संग दिल।

0: इसी मुसीबत कहते हो छोटे भैया?
1: ये तुझे कहां से मिली?
0: आज मैंने तुम्हें माफ कर दिया। रक्षाबंधन के दिन भाई बहनों की रक्षा का वचन देते हैं। मैंने आज तुम्हारी रक्षा की, ये कभी न भूलना।

0: से गिर गया या जानबूझ के गिरा दिया? झूठ क्यों बोलती हो भाभी?
1: मीना, भाभी को झूठा कह रही हो? बेशर्म, शेखर। मेरे पास वक्त नहीं है तुम बातों के लिए, मैं जा रहा हूँ।
2: नहीं भैया, ये तो बहन की प्रार्थना है। बहन हो और भाई राखी न बंधवाए तो बड़ा अपशगुन होता है भैया।
1: होता है तो होने दो।

कसम से सनम प्यार तुमसे करते थे करते हैं हम उम्र भर करते रहेंगे इस अर्धफिल्म हम आपके दिल में रहते हैं दिल प्राप्त लीजिए इसको सौंदर कुमार सानू एंड अनुराधा कसम से सनम प्यार तुमसे करते हैं हम उम्र भर करते रहेंगे इस अर्धफिल्म हम आपके दिल में रहते हैं दिल प्राप्त लीजिए इसको सौंदर कुमार सानू एंड अनुराधा पौधवल।

सुन मेरे हम सफर, क्या तुझको इतनी सी भी है खबर इस खुशामदोर अखिल सचदेव एंकॉम आयो द फिल्म बद्री की दुल्हनिया आयो द फिल्म मैंने दिल तुझको दिया कम खुशामदोर सोनू निगम एस सुनिधि चौहान मैंने दिल तुझको दिया इन प्रोग्राम गीतों के लहर फिया रेडियो SBS।

आते आते आ गए पास हम, जाते जाते ले गए तुम सनम, मेरी नींदे मेरे सारे सपने, ले चलो मुझको भी साथ अपने, तुम न मारो तो तुमको कसम, was uit de film Chori Chori en is gezongen door Elka Yachnik en Babu Supriyo. Gaan we dan verder met uit de film Chehre, Rang Darya.

जब भी कोई लड़की देखूं मेरा दिल दीवाना बोले ओले ओले। इसका सॉन्ग अदूर अमित मिश्रा एंड अभिजीत एंक्वाम द फिल्म जवाने जाने मन एंड द फिल्म अभिमान कॉम्थ सॉन्ग अदूर लता मंगेशकर तेरी बिंदिया रे।

कुछ मैं बदल गया हूँ, कुछ दिल बदल गया है। कुछ मैं बदल गया हूँ, कुछ दिल बदल गया है। मेरा वजूद

आखिर मेरा जुनून मेरे काम आ गया, आखिर मेरा जुनून मेरे काम आ गया, उनके लबों पे आज मेरा नाम आ गया।